ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसरुधाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्।